बोल कर आहार शर्म धर्म का डेरा तू नानकूड़िया भरपूर मत टिका तेड़ तो दिखाई हाथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैरों में प्रवाण।

काले लिखना लेख आपन डैगरीवान मह सिर नीवा कर देख अपनड़ गिरीवान में सिर नीवा कर देख बेशुमार अथाह अगणित अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले गुरु गरीब नवाज चवर शतर और तख्त दे मालक सर्ब सांझी वालता दा उपदेश देन वाले धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन अस्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वालेओ सतगुरु जी ने बड़ी अपार बख्शिश कृपा वरताई है जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वाले हो जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दिया लड़ीवार विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन अस्थानां तों सरवण करदियां हो ओह चल रहीआं लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए विचारां दी आरंभता तों पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखन मालक आप रसना उत्ते वरत के
ਪਵਨ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਵਾਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋ ਰਸਨਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

से पूरे गुरत जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत ना।

पौड़ी वड़ी वड़ा पार तुना मर्तबा रंग प्रंगा नेक जपन करतबा जिया अंदर जिया सुख जानला सब कुछ तेरे वास तेरा कतला तेरे कर नद बदाई तुद कर मां मैं तेज अपना आप जर सर्व कला पर पूर सजत कता नानक दा

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही अस्मी। प्रथम भगवती स्मर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासा हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइय जिस बिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै करनो निदा बिताय। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपया वंट सकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने तन मेहत सी दिते बंद बंद कटाए खोपनियां लहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े। तनारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां स्वासां नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे। चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रसे रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेता वि। चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रसिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केसां दत्त दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर जियां दे दर्शन इसनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगो अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई दा तार जी। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं छोड़िया गया है। खुले दर्शन दे दार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो। हे निमानियां दे मान नितानियां दे तान न्योटियां दी ओ सचे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जियां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी विखे शब्द कीर्तन छे पौड़ियां आनंद साहिब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जियां दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी। तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनी आ यात्रावां सफल करनी आ। दरों घरों गुरसिख

दोहरा गया भई अकाल की, सब सिखण को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत

गया स महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सदगुरु प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्यावहीं तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दयाब हो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना तू बार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो से महें तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहीं तुद जी से जाने जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर ते आया जी तिन टूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तू जी हर अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तपतापहें जपहें बयंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुझे बड़े वरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुझे आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सिका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मिंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सवनी ते आया जिस नाओ कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुग भाया तुदे आप छोड़या आ मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माही तुझ बिन दूजा कोई नाही जी जन सब तेरा खेल विजोग मिल बिछुड़या संजोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आक वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होए
तुद में दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने ही सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरणय भैले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबियले, मान एक न चेतस मूड मना, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहो, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणत नानक तिनकी शरणा, जैनों तू ना ही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मेरे साथ संगत भज केवल नाम, स्रंग्याम लाग पौजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो, जप तप संयम धर्म ना कमया, सेवा साध ना जन्या हर रया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पर की रखो हो शर्मा, जप तप संयम धर्म ना कमया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पर की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करोहा देर अच्छा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम काब हो, आभाद मुहे बचाब हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब इनको आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, उजो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मह राखण हारे, साहेब सन सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम्हा पुरी चतरदस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सलोक सवारा, नमस्कार हैं तहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव धैन जक्षण उपजायो, आद्यंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो,
कटकट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के बड़ पड़ की जन्ने, जाब उदकर्क करा करतारा, प्रजातर्त तव देहे अपारा, जाब आकर्क करत हों कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे, तुम सब ही ते रहते नरालम, जानत भेद भेद अर आलम, रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनादि असंभ, तका मूढ़ उचारत पिता, जाको भीव ना पावत बिदा, ताको कृपाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भीद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, रंकार का चीनत न भैव, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखाना जय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा, अंडज रसे तज कीनी, उतपज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्टि दिखाए अचंप, आजुग स्रूप स्वयंप, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो बार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पत्ता, सकल मलेच करो रणगाता, जे आस तुझे तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो हवाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट न है, रक्षा हुए ताहे सब कला, दुष्ट अरिष्ट डरे तत्कला, कृपा दृष्ट तन जहे न हरियो, ताके ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शहा शवै सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फांसती ताहे ओबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा, खड़ग के मैं शरण देहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी, सर्वठो मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई, खड़ग के मैं शरण देहारी, आप हाथ दे लेहो बारी, सर्वठो मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहे मत एक नाम मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सभाए,
बहुपेद कहें हम एक न जान्यो। श्रियस्पान कृपा तुम भी कर मैं न कहो, सब तो ही बखन्यो दोहरा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार। बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छड

राग रतन परवार प्रिया शब्द गामण आइया शब्दो तंगावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। इमन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार सब सवारना। सवना गलना सिमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सच्चे साहेबा क्या ना ही घर तेरा करता तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द गनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या ना ही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैन भुखा सब गवाइया करशां सुख मन वसया जैन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिठो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंशब तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तैं सुख होआ तित खर अन्न हद वाजे आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी सोना ते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर बुरे मिन्नवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तूरे सोण ते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत्संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचा तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नहें जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिए

तन मन थी वे हरे आ तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थी वे हरे वाहे गुरु जी का खालसा।

पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे

0: usually talk.
1: अको सतनाम श्री कल में एक नाम कृपा निध कल च एक कल युग एक नाम आ कि कृपा निध वाहिगुरु परमेश्वर का करुणालिया है कल खंडन है जगतेश्वर है वो मेरे मालक का नाम जपना है जड़ा कृपालू वाहिगुरु आदा नाम जपना है अखो वाहिगुरु कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै जाहे कोई भुलेखा तो नहीं रह गया जाहे जपै जेदे जपया गति हो जाती जीव दी आखो वाहिगुरु और धर्म ता कै सम नाहन और धर्म ता कै सम नाहन होर कोई धर्म ओदे बराबर ते की करन तो गुरु का सिमरन करन तो बिना कोई धर्म ये बराबर नहीं गा जिहड़ा रब का नाम जपना ये बराबर कोई धर्म नहीं।

जानो ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भरम की काई। जिन्हें चिर अपने आप नू चीनोगे नहीं, अपने आप नू जानोगे नहीं, चीनण का मतलब जानना, आखो वाहिगुरु, चीनण का मतलब अपने आप नू नहीं जानोगे, उन्हें चिर इस तरह धक्के पैणगे। इस तरह सचमुच ही दुश्मन ने नहीं सानू मारिया, आखो वाहिगुरु, दुश्मन ने सानू नहीं मारिया। वो समय लंघ गए, 84 तो बाद जे मारिया तो इन्हें मारिया। ये मैनू जवाब देन, जिदन इंदिरा गांधी का कतल होया सी, आखो वाहिगुरु, गज के बोलो तो एक एक बंदा कन्न ला के सुने इस गल नू। उदन गरीब सिख आम सिख घर च साड़ता, गला च टायर पा पा के प्यो ते पुत नू बन के रक्षे दे उत्ते ते अग ला के छड़ता, ते अगले दिन नू इल्लां कां कुत्ते खाण डे सी साडे गुरु के सिखां नू। महाराज तुहाडे डेरियां ते नहीं कोई आया, बोलो ना गुरु के सिखो, को कन्न च कन्न बई पता लगा, जिहड़े तुहाडे डेरे सी उत्थे CRP लग गई, की गल है, की नाता है अकालपुर सरकारां दे नाल, चार छपेरे हर डेरे दे CRP लग गई, एक बंदा नहीं आया, किसी ने एक तीली बाल के उन्होंने डेरे च नहीं सुट्टी, कहना दे घर साड़ते, नानकसर वाले नानकसर वाले नानकसर वाले नानकसर वाले नानकसर भगती का घर, आ भगती का घर वेख लिया तुसा, आखो वाहगुरु। एक सिख आया, एक सिख जिन्हें माफिया मंगातियां, मंगाइया कि नहीं बोलो जी, उन्होंने लोग जो मर्जी कुछ कवे। एक मर्द जड़ा अज तक कोई नहीं सी गया उन्होंने कोल, एक गया जेदे कोले 5-5 करोड़ रुपए की ऑफर करता सुका रागी, जड़ा मैं तुहानूं दस्सिया ना नहीं किसी का ले, सुका जिहा रागी जिहड़ा उन्हां दा 5-5 करोड़ रुपये की ऑफर करता रहा, मैं 5 करोड़ रुपया देना साडा पिछा छड़ दे। उन्हें कहा तुसीं इह गलत गल्लां कर रही, छड़ दो, मैं तुहानूं वैसे ही छड़ दिंदा, मैनूं लिखती दिओ, अज तो बाद इत्थे इहो जिही गल नहीं होगी, तो श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा चलूगी। उठूगा कोई मर्द फिर, आखो वाहिगुरु, वह भी अजे जींदा ही आ, वह कहड़ा चले गया कितने, अपने आप च अंदर नानकसर वाले हो थोड़ी जी, जिस बंदे दा इन्ना कुछ आ गया हो ना वीडियो दे सोशल मीडिया च, उन्हें थोड़ा जा 5-7 साल डर के रहना चाहिए। रब ना करे किसी का आ जाए तरह, तो कई चिर तो अंदर ही वड़ जाता, अपने शर्म नाल बाहर नहीं निकलता। महाराज कृपा करे, पल मेरी अरदास आ सतगुरु तुसी उन्हां नूं भी समत बख्शो, है चेहरे ते सिख ही ने ना, सतगुरु कृपा करे सारिआं दा भला होवे। मेरा साहब कहिंदा सो तुम ही मैं बसै निरंतर, एक रस रब तुहाडे अंदर वस बैठा, जितना शीशे दे विच तस्वीर बनी बैठी, सामने हो गए तो वेख लो, तस्वीर शीशे दे विच दिसदी नहीं, तुसी सामने आओगे इस तरह भी, तुसी रब दे सामने आओ, तुहाडा भी सारा यही कार्ज गुरु सवार दो, तुहानूं रब दे दीदार हो जाणगे। रब दे सामने तो जाओ, मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सामने तो जाओ, वो तो तुहानूं कह जूगा तेरे ते मेरे ते फर्क ही कोई नहीं, खालसा मेरे पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरा रूप है ना, थले थले कर लता, खालसा मेरा रूप है खास, खालसे मैं हूँ करूँ, खालसे दे विच मैं ही रहन दिया, इन्ना कुछ देता मेरे सतगुरु पातशाह ने। सारिआं नूं प्रेर के लियाओ, 3 दिन होर बाकी ने, गुरु कृपा करे किन्ना प्यार हो प्रधान साहब नूं इस कथा दे नाल, जिहड़ा फिर आखिया भी तुसीं फिर साडे कोल ही आण के कथा करो। मैं बाहरले देशां तों हो के जे मैं राजी रहा शरीर करके, तां आप जी दे कोल फिर लगातार महीना उन्हां ने कथा किया, आसा की वार करन दी, आसा की वार दी कथा लड़ी वार, अगे आपां जदों कीती किते बैठ नूं जगह मिलदी हुंदी, इत्थे करांगे वड्डे गुरद्वारे दे विच, सब गैलरियां भर गईयां सी उदों। उह जिहड़ा मॉडल टाउन एक्सटेंशन आ, कोई बैठ नूं जगह नहीं उत्थे मिलदी, आपां फिर आण के करांगे, दसांगे लोकां नूं, मत्थे टिका

पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी।

जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्त आखिए करते का होए बिचारो। तित कर गावो सोहला सवरे हो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरभाव का सोहला हों वारी। जित सोहला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े संभालियन देखैगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै तिसदा ते कमन समार। संवत साह लिखिया मिलकर पावो तेल। देहो सजन आसी सड़ियां जो होवै साहिब समेल। कर करे ओ पवचा सदड़े नित पवन। सदना रस सिमरिय नानक से दे अवन। राग आसा महला पहला। शे कर शे गुर शे उपदेश गुर गुरे को वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख बधाई तोय रहो। विश्वे चसिया कड़िया पैरां थित्ती वारी माँ हुआ। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला। गगन मैथाल रव चंद दीपक बने। तार कमंडल जनक मोती। धूप मल्याण लो पवन चवरो करे। सगल बनराय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए। भव खंडना तेरी आरती अनहत्ता शब्द वाजंत पेरी रहो। सहस्ताव नैन नन नैन है तोए को। सहस मूर्त नन एक तोई। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन। सहस्ताव गंध एव चलत मोई। सब में जोत जोत है सोए। तिसदे चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए। जो तिस पावे सुवारती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो। आन दिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते त्रिनाए वासा। रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर वो भरिया मिल साधु खंडल खंडाए। पूर्व लिखे लिखत लिखे गुर पाया मन हार लिव मंडल मंडाए। कर साधु मंजली पनवडाए कर रंडौत पनवडाए। राव साक तार साधना जानिया तने अंतर हो मैं कंडाए। ज्यो ज्यो चले जुबै दुख पावे जमकाल सह से डंडाए। हार जना हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडाए। अविनाशी पुरग पाया परमेश्वर बहु सोभ खान ब्रह्मंडाए। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वडवडाए। जन नानक नाम अधा टेक है हर नामे सुख मंडाए। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टैल की बेला। इहां खाट चरो हर लाहा आगे बसन सुहेला। आवद कटे दिन सरे नारे मन गुर मलकाज सुभारे रहो। ए संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पियावे ए रस कात कथा तन जानी। जाको आए सोई ब्याजो अर गुर ते मने बसेरा। निज कर मैल पावो सुसै जे बौड़ न होए गो फेरा।

अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने शिव बिरंच तर ध्यान नित है जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर

निर्मल नाम सुधा परपूरन शबत रंग प्रगटे दिन आगर गहर गंभीर अथा अत बाड़ सो पर सदा सब

जाको मन ध्यान धरै फिरत सकल जुग, कबहू का को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहत

तेज पुंज तह लोग परगास देखत दर्श भटक परम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगास सेवक सिख सदा अतलुपत अल समू ज्यों कुसुम सुबास बेदे मान गो

अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीरत वंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोड़ साथ, दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दा

0: करो दुख दरिद्र अंधियार को नाश। कव कीरत जो संत चरण मुड लागे, तिन काम करो जम को नीतरास। जिव अंगत अंग संग नानक गुर, तिव गुर अमरदास कै गुरु रामदास।
1: जिन सतगुरु से पदार्थ पायो, निस्वासुर हर चर निवास। तांते संगत सगन पाए पो मान्य, तुम मलियागर प्रगट सुबास। त्रू पहलाद कबीर तिलोचन, नाम लैत उपजो जो परगास। जह पिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जान्यो, कीनी भगत प्रेम लिवलाई। तांते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन शब्द सुरत की नीव रखाई। गुर अमरदास की कथ कथा है, इक जी

चरण अगन हरियो निस्बासर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत पांडरियो पन दास आस जगत्र गुरु की पार्स पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो

भगत प्रहलाद की, हर नाकश फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बोसाज, सो दामा अपदा ते राखिया, गनका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुरु सो प्रसन्न कल जुग होए, राखो दास पाठ की लाज।

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय हुए सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटिए सजन सचा पात शाह सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सवना दावे सा जिस पास बैठिया सोही है

करतना लगी वार जी सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदिया गुर बिन कोरे अधार किरत कर्म के बिछुड़े कर कृपा मेलो राम चार कुंड दै दिस प्रमे थक आए प्रभ की शाम तेन दुदै ते बाहरी कितै न आवै काम जल बिन शाख कुमलावती उपजै नाही दाम हर नाना मिलिया साजने कत पाइए विश्राम जित कर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से ग्राम सब सिंगार तंबोल रस सण देही सब खाम